सुध लई ए पौटे दी धरती जो राजा मेदनी प्रकाश दी सी। राजा मेदनी प्रकाश ने सतगुरु नु अपनी मदद ले याद कीता। जब सतगुरु ने आके सहायता कीती ते मेदनी प्रकाश कहन लगा, साहब जी एक याद अपनी तुसी भी इत्थे बनाओ। ते सतगुरु ने जमुना दा तत सुंदर वेख के अपना सज्जा चरण कोड़े तो तले लाया, उस धरती दा नाम श्री पौंटा साहिब पै गया। कहिंदे सतगुरु इत्थे विराजमान होए।

अनुपम सतगुर कहिंदे ने साडे हलवाई लाल चंद इन्हां नूं भी बड़ा जोश आया, गुस्से दे विच लाल हो गए, कहन लगे सतगुरु जी मैनू भी आग्या दिओ, मैं भी जंग करांगा। ते सतगुरु कहन लगे लाल चंद तू कदी तेगता चलाई नहीं, जंग किरें करेंगा। सतगुरु नूं कहन लगा लाल चंद, सतगुरु जी मैं तेग ते चलानी नहीं जानदा, लेकिन खुरपा चलाना खूब जानना, आप असीस दिओ मैं तानू इहदे नाल ही लड़की विखावांगा। कहिंदे ने लाल चंद जंग अंदर आके बड़ा सुंदर लड़े।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमत मटकी कान फोरं। कहने कृपाल चंद उदासी जी ने आए जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारे है। जद कुटका उदे सिर दे विच वजे आ साहब कहने ने मैं ठीक कह रहे हैं उठी छिच इच्छन कदा मेज जोरंग मनो माखियन मटकी कान फोरंग। जद सिर दे विच सोटा वजे आ ते उदे विचो मगध दियां छिटां इंज बार आईया जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दिती होवे।

इन्हें बड़े ही बाण चलाए, बड़े सैन किसने मार दिते, मैदानी जंग अंदर लटा दिते। क्यों? रसंग रोदंग राचे महालोभ माचे, क्योंकि गुस्से दे विच रत्या सी, लोहे दी तरह लाल होया, जंग कर रहा सी। हाने शस्त्र तारी।

मुदकर सो साहन पजो संग लेके सुसारी सुपाहन। सतगुरु कहते ने अपने आप नू बड़े सूरबीर अखवांदे सन, लेकिन मेरे सूरबीरां दे सामने इना दे पासो एक तीर भी ना चलिया, इथों तक के अपनी सेना दी जान बचांदे जंग विचों ना

जगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन दा जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी दे इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा है। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा है। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होन तो बिना, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले का आसरा, तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हूं, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है, फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

0: दुख पेन सफरिंग मिजरी इते कहते जहर है लाइफ च पॉइजन है दुख मोहरा मोहरा मैंने पॉइजन जितने भी साड़ी लाइफ च पेन है मिजरी है दर्द है सफरिंग है वो कहते एक जहर है हुण उस जहर का इलाज की है मारण लफज वरत्या है मारण का मतलब हुंदा मसाले पा के दवाई जो तैयार की जाए अर्ब्स वगैरह पा के जो दवाई तैयार की जाए कहते उसनू मारण आखते अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के विच पॉइजन है तो उस पॉइजन नू केड़ी चीज मार सकती है बहुत ज्यादा ध्यान दो ट्राई टू बी फोकस्ड दुख मोहरा दुख जहर है उस जहर नू मारन दे वास्ते ऐ बड़ियां इनकरेजिंग लाइन्स हन इन द सेंस कि जिस किसे इंसान दी जिंदगी च अत दुख है सफरिंग है मिजरीज हन उहदे वास्ते एक सोल्यूशन दस्या जा रहा है एक वे आउट है एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है कि तुहानू वरीड होण दी लोड़ नहीं चिंता करन दी लोड़ नहीं अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं तो महाराज जी आखदे ने मारण मारण दा मतलब मसाले पा के कीती हुई तैयार दवाई जिहड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है कहिंदे हन उह है हर नाम वाहिगुरू दा नाम दुख महरा मारण हर नाम दुख नू मारण वाला शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है वाहिगुरु दा नाम सो नानक के कारण सारे बोलो केवल नाम इस पंक्ति नू याद करना है वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे नानक के कारण केवल नाम तो मैं तो बात बोल रहा करो कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी नानक के कारण दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा डार्कनेस है न समझी है अज्ञानता है तो महाराज जी ने पूछिए महाराज इतनी अज्ञानता है इतनी नासमझी है इतना अंधेरा है तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा चानन जगान दा तो गुरु महाराज जी आखदे हन
1: दीवा मेरा एक नाम
0: कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है जड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू इग्नोरेंस नू इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है वो सिर्फ नाम दा दीवा है कहिंदे मैं नाम दा दीवा लेके आया अते आप देखते हो जदों दीवा बलदा है तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जड़ी बर्न हो जाती है जड़ी सोख हो जाती है जड़ी खत्म हुंदी है वो तेल हुंदा है तेल खत्म हुंदा जांदा है महाराज जी आखदे ने साडी सारी जिंदगी दे जड़े दुख हन उहनां नूं समझो तेल दे विच नाम दा दीवा जगा दिओ नाम दी बत्ती जगा दिओ नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नूं बर्न करके रख रहेगी जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नूं बर्न

0: नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतो आज समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर इज सच थिंग। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं
1: तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है,
0: तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र स्मृतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण स्मृतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि तो गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने के नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चा उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है और किसी गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया है, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार।

अपने मन व्यक्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनों प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनों देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनों चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

डाइजेस्ट करनी थोड़ी जी मुश्किल है। बिन नावे सब चोर, बिन नावे की आख्या है, आप आखो बिन नावे सब चोर, तो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावे सब चोर, यू मस्ट राइट डाउन दिस समवेयर। बिन नावे सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं तो कोई चोरी नहीं करता, मैं चोर किमें हो गया, मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह देता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना, मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावे सब चोर, बिन नावे सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हन, ये बना अपनियां लेंदा है कि मेरियां हन। किसे दी चीज नूं तुसीं अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो होर की होया? किसे ने कोई गहना पहने होया है, तुसीं किसे ना किसे ढंग दे नाल उसनूं उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा दा है, असीं कहने मेरा है, माई लाइफ। When we say my life, असी इसनू फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनू बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जदों असी कहने मेरी जिंदगी, किसी चीज एक किसी वस्तु किसी होर दी है, लेकिन असी लाइफ नूं भी कह दें कि यह मेरी है, जिसका सानू पता ही कुछ नहीं कि यह चीज की है, उसनों असी कहने मेरी है। यह चोरी नहीं है? यह तन इंसान सोचता मेरा है, भला इंसान नूं पूछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनों बनाया सी, तैनूं तां पता भी नहीं जदों यह बन रहा सी, यह तो किसी ने तैनूं गिफ्ट दी है, इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसे दी होर है, इतनी कॉम्पलैक्स मशीन नूं चलाण वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किस दा है, जिस दा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ये तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसी होर दी है, लेकिन यह कहता है मेरी है, तो यह चोरी हो ही जा ना हुई, चोरी हो ही जा ना हुई। महाराज जी ने आख्या जान के रुख बिरख तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनों असी अपनी इंडस्ट्री के लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल असी खुद बनाया है, लोहा सोना कोयला रबड़ के दरख्त अते दरख्त जड़ लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हों तो असी मार्बल लैके आने हैं, असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जड़ी है छुपी पई वो परमात्मा की साझी हुई है, उसनों फिर बाद च लिया के असी आखते मेरी है, यह चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जड़ा संत है वो ये कहता है मेरा मुझ में कछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण साडे कोलों कुछ चले जाता है तो असी रोना शुरू कर देने हैं कि चले क्यों गया, जे तुसी पहले दिन तो ही ये सोच के रख दे कि ये तुहाडा है ही नहीं, तो फिर तुहानू तकलीफ किवें होंगी?
जिस चीज नु अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखते हैं जिन कीते तिसे ना जानी, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनु ते ये जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर, नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावें असी दसा नहों की किरत भी करते हुई है, ता भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखा ना करे। तो गुरबाणी नू चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं कहते हैं

0: कि तेरे कोल शक्तियां सारियां समर्था सारी है पर तू वरतदा नहीं तू जरदा है तू वखाउंदा नहीं प्रगटाउंदा नहीं तू शरा वो जिहड़ी ताकत है वो रिद्धि सिद्धि है वो शक्ति है उस नूं वखाउंदा नहीं प्रगटाउंदा नहीं बल्कि जर के दिखाउंदा मेरे सतगुरु क्योंकि तू लोकां नूं जीना भी सिखाउणा है जरना भी सिखाउणा है मरना भी सिखाउणा है तेरे कोल इजाज है तू इसका मास्टर है ते लोग तेरे कोलों सिखदे ते जिन्हां नूं आ गई ए जाच जिन्हां नूं जीना आ गया जिन्हां नूं मरना आ गया जे इक सुर हो गए ने वाहिगुरू नाल वैसे तां मरना सारिआं ने तुर मरन लिखाया पर गुरमुख मरदे ने ते मौत जिहड़ी बड़ी भयानक है उह खूबसूरत हो जाती जन उभरे हर हर ध्यान जीओ मौत इस भयानकता तो रब दे बंदे बच के निकलदे ने वखरे हुंदे ने अलग हुंदे ने हर सोभा पाई वो आप ही शान नाल जीउंदे ने पर जूदे किस गल दे शान किस गल दी हर नाम बढ़िया है हर दरगाह पैदे जान जी वो सच्ची दरगाह विच प्रभु दी दरगाह विच सम्मान धोए हुए जाते असरोपा देने सम्मान देने किसी की चंगी करनी हो निरंकार की दरगाह विच भी मान होता है हर दरगाह पैदे जान जी दरगाह च सम्मान होता उन्हां दा हर दरगाह पैदे हर नामे सीधे जेडे नाम दे नाल अपने जीवन विच सुचज पसार के सोहना जिहा जीवन जीउंदे ने दरगाह विच सन्मानित हुंदे ने हर नामे ते सुख पाया ओह असली सुख नूं प्राप्त करदे ने जिंदगी दा असली सुख ओह मानदे ने बल्कि मौत विच वी उहनां दा सुख बंद नहीं हुंदा उहनां दे मगर लग के उहनां दे पूर्णियां ते चलण वाले भी इस सुख नूं मानदे ने आपां रोज़ याद करने आ उहनां नूं जिन्हां गुरमुखां ने नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही धर्म हित सीस दित्ते बंद बंद कटवाए चंगड़ियां ते चढ़े ओह जिन्हां माइयां बीबियां ने मीर मनू दे घोड़ियां विच सवा सवा मन पीसन पीसे खनी खनी रोटी ते गुजारा कीता अपने बच्चियां दे टोटियां दे हार गलां विच पुआए तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया मेरे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ओह तेरी पैड़ ते तुरन वाले तेरे पूरियां ते तुरन वाले लोग सन जिन्हां नूं जीना भी आ गया ते मरन दा भी सुख लैंदे ने उहनां दा सुख तत्तियां तवियां ते भंग नहीं हुंदा ओह बुलदियां देगां च भंग नहीं हुंदा हारिआं नाल छाए जा के
1: go and attend to a wedding and to teach the Sangha in a faraway place from his mother. Arjuna was filled with great pain of separation. And his mother gave him this blessing before he left. This is a translation of Pita Mata Kriya Sus. And I was struck by the meaning of it, by the purity of the prayer. And we're worrying so much about our children and what they're wearing, what they're eating. This Shabbat says, may your clothes be the protection of God, may the food be the singing of God's praise.

प्यास लगी, पानी दी पाल कीती, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू प्याया, कुछ लोकां नू भी प्याया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना, जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मानसरोवर हंसला हंस जेडे ने मानसरोवर नाल प्रीत करदे ने मानसरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है चकवी

खीर बाल हा जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चात्रक मुख जैसे जल तरा।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

भगत कबीर बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं ता उसके जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर धारण कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे उसनु मैं गुरु धारण करा। ता दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं ओ गुरु तारण दे लायक ने तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे नहीं। जे तेनू गुरु दी लोड़ है अमृत वेले उठ जेड़ियां पौड़ियां गंगा दियां स्वामी जी उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे ठीक है क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तू स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नू नींदर नहीं आ रही क्योंकि गुरु दी लोड़ है ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्लां ने या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नू खुश कर ली। जे ता गुरु नू खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं घर बार तिया पुत्रा माया विच रहंदिया होया परमेश्वर नू याद करना माया विच रहंदे होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना मोह माया तो उत्ते उठ के रहना ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात हुई घरों उठे

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अद्धी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन, कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने

ते स्वामी जी तू पहला ही अगे ही दे जाए के लम्मा पया कबीर ते थाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

लोहा पारस नाल लग जावे उस वेले सोना बन जांदा है। इसे तरह ही कबीर साहब दे शरीर दे नाल स्वामी रामानंद दा पैर लगा ते लूलू दे विचों राम राम दी आवाज

ऐसा शुरू किया स्वामी रमन दे पैर लगा के एक एंडा के उठ राम के राम को पाई गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पाए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता क्योंकि हार छोटा ते चिंता विच नहीं के सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता किवें करा ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंड खोल के हार गल विच पा के फिर गंड मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ तो नहीं है कोई मखौल है ठाकर तेनू दे दिया तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी जा के गवां चार तन्ना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं ता मैं दूसरी तरह लवांगा ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के तन्ने नूं दिता अपना पिछा छड़ाण वास्ते पत्थर एक लपेट कर दे तन्ने नूं गैल छुड़ावे गैल अपना पिछा छुड़ाया ते लै ठाकुर।

पर तन्ना हाथ जोड़दा मिन्नता करदा मत्थे टेकदा कहिंदा ऐ परमेश्वर मैं अनपढ़ा मैनू ए नहीं पता तेरी अरदास किवें करी दी पर मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना कृपा कर ऐ रोटी खा हुण तन्ने नू की पता के लोग ठाकरा नाल भी ठगी कर दे थोड़ी जी चीज पुजारी मूर्ति दे मुंह नू लगांदा है अधी आप रख लैंदा है अधी घर वाले ले जांदी तन्ना ए समझदा के पत्थर दियां मूर्तियां सब कुछ खांदियां ने सब कुछ पींदियां ने इस करके

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हों पी मुंह ना जुटालसा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडता दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल नरा

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेन चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दी है। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

जमींदार सी। पहले चंगी चाहिदी है, अनाज चंगा चाहिदा है, ताके इन चीजा वालों

पोड़ी नुके है भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मझ भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं सौ

है परमेश्वर घर बन गया दाल आटा घ्यो ये भी मिल गए पैरी पाण वास्ते जुतियां सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए अनाज भी मिल गया गां ते मज भी मिल गई आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई सोना घर बन गया पर एक चीज की कमी है भगवान कहन लगे धन्या ओ केड़ी कमी कहन लगे परमेश्वर ओ कमी है घरवाली दी भगत जी कहंदे ने घर की गेहन चंगी घरवाली आज्ञाकार तेरा नाम जपण वाली चाहिए भगत जी अपनी बाणी विच

पोतना अनपढ़। नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है, पोतना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे। उस तन्ने ते तन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी, तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी। तन्ने नु अपने नाल बठा लिया। जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेक दे, ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेक दे। भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने, जेड़े उपदेश करते ने, ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो, सारयां दी उपालना करन वाला है, तू बंदगी कर, तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छड़, नाम दी चिंता कर, क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

और मन विच प्यार है। कहंदे ने दिलां नूं दिल दी राह हुंदी। माता गंगा जी प्रशादा लैके तुरे जा रहे ने और बाबा बुढ़ा जी अज आप अपनी जगह तो उठ के अगा होए और भज के माता गंगा जी दे सिर तो प्रशादे अते लस्सी दी

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरु सिखानू खोज लहंदे।